0: ऐसे ही,
1: लेकिन अच्छा, बाय इनविटेशन,
0: जी जी बाय इनविटेशन, क्योंकि ये सब लिमिटेड है, क्योंकि इट्स नॉट ओपन फॉर एवरीवन.
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक,
0: उन लोगों के लिए जिनको शौक भी है और जिनको हम दिखाना भी चाहते हैं.
1: या, या.
0: तो वो उन इसलिए ये इस
1: तरह. ओके ओके, नाउ आई गॉट द पॉइंट.
2: लेकिन इंशाल्लाह आपको मजा आएगा.
1: जी जी, ओह ऑफ कोर्स, जो सुपर नाइट, तो क्या बात है जी. इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे जी वसीम भाई?
2: बस इसमें यही है कि एक तो आप आए और प्रोग्राम से महसूस हों
1: जी,
2: अपने लोगों से मिलें.
1: यस,
2: क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है
1: जी,
2: स्पेशली इन मुल्कों में. तो ये इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गो अराउंड, सोशलाइज, और प्रोग्राम से जाहिर महसूस भी हो.
1: जी जी,
2: ये तो मेन चीज है, एंटरटेनमेंट.
1: बिल्कुल,
2: तो उसके साथ साथ आप दूसरों से नेटवर्किंग भी कर सकते हैं.
1: इसलिए आफ्टर जो है पेंडेमिक, आप सबको पता है कि लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गए, लाइफ चेंज हो गई है, लोगों की थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई है, मेंटली बहुत प्रेशर है हर तरफ, मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूर आजकल जो है अपना बढ़ चढ़ के बोल रहा है. आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि इस तरह के इवेंट हो जिसमें लोग आए, मिले, एक दूसरे को हम देखें जिनको हम नॉर्मली हम नहीं देखते, बिकॉज एवरीवन इज बिजी एट वर्क, बिजी इन लाइफ, बिजी विद द फैमिली. लेकिन फिर ऐसे इवेंट होते हैं तो लोग आते हैं और फिर आके मिलते हैं एक दूसरे से, वो बहुत जरूरी है आज.
2: बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी आप उस चीज को ज्यादा सुनना चाहेंगे जो आपकी मदर टंग है.
1: यस एब्सोल्युटली,
2: तो दूसरे लोग भी जाहिर है अदर देन पंजाबी, वो भी आके महसूस हो सकते हैं
1: जी.
2: अगर उनको कोई अल्फाज का प्रॉब्लम हो तो किसी से ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है. तो एवरीबॉडी इज वेलकम बाय इनविटेशन.
1: जी जी,
0: जनाब भाई मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ
1: प्लीज,
0: कि जनाब भाई मैं इसमें क्यों, मुझे क्यों शौक आया, क्यों इंटरेस्ट है. अच्छा जनाब भाई, आप देखें ये ना, जैसे वसीम भाई ने भी नाम लिया, बुल्ले शाह का, बाबा फरीद का, हमारे ये लोग हैं जलाल भाई, देखे ये सदियों पुराने लोग, मसलन थाउजेंड ईयर्स के ऊपर के लोग, जो बातें उन्होंने तब की थी ना जलाल भाई, आज दौर चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया, हम दूसरे कल्चर में आ गए, दूसरे मुल्कों में आ गए
1: जी.
0: हमारे यानी कहते हैं ना कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, तो एडवांसमेंट कितनी आ गई है
1: जी.
0: लेकिन जलाल भाई मैं आपको बात बताऊं, उनकी जो बात है ना वो आज के दौर में आज भी सच नजर
1: जी जी बिल्कुल,
2: क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है.
0: यानी आप देखें ना, उनकी दूरंदेशी, उनकी या उनका विजन उस वक्त जो था, या उन वक्त बड़के कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो उनको पढ़ना नहीं आता था, वो अपनी शायरी भी लिखवाते थे. लेकिन जलाल भाई उनकी की हुई बात, उनकी बुजुर्गों के बारे में, बच्चों के, लोगों के, दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में, शायरी में, लिविंग में, रहन सहन में, तहजीब और तमद्दन में, जलाल भाई आज लगता है कि जो उस वक्त उन्होंने जो बात मेरे लिए मेरे दौर में आज की
1: बिल्कुल सही बात,
0: ऐसी रियलिटी है.
1: या, या, या.
0: और इसीलिए हम चाहते हैं कि यार वो जो लोग, ये नहीं है कि वो बाबा बन गए हैं या पिछली सदियों के लोग हैं, नहीं, लेकिन जो उनकी शायरी, जो उनका कलाम, और जो उस कलाम में जमाल भाई जो मैसेज होता था ना, वो ऐसे लगता है जो आज मेरे लिए
1: आज भी है. बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये रियलिटी में हकीकत को
1: मैंने,
2: इसीलिए तो अभी तक वो हमारे जेनों में, हमारे ख्यालों में वो जिंदा है,
1: जिंदा है. जी जी जी जी, यू नो हम कभी ऑफ कोर्स हमारे जो शो पे जो हर तरह के गेस्ट आते हैं, लेकिन कभी इस तरह की बात होती है बड़ा अच्छा लगता है हमें भी, थोड़ा हमारा जो अंदर का जो अपना मुहिम में क्या बोले मुहिम वतनी का जो है वो भी जाग जाता है ना. अभी जो है अपना 14 अगस्त भी आ रहा है.
2: जी जी,
1: आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि ऐसी बातें हों, अच्छी अच्छी अच्छी बातें हों, ताकि इस तरह की हम जो है फिर एक जो है कम्युनिटी को ब्रिंग इट टुगेदर.
2: इंशाल्लाह उस पे भी हम अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे.
1: या ऑफ कोर्स जो 14 अगस्त का इवेंट होने जा रहा है, जो कि अपना पाकिस्तान डे का, आजादी पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, तो 14 अगस्त का जो है पीएससीए अपना पीसीए की तरफ से जो इवेंट होने जा रहा है प्रेरी इवेंट्स पर.
2: जी जी.
1: तो और जो है वसीम भाई जो नेक्स्ट वीक भी आएंगे, एंड विल टॉक अबाउट द इवेंट के अपना 14 अगस्त का इवेंट में क्या तैयारी और क्या हो सके. और ऑफ कोर्स एवरीवन इज इनवाइटेड टू कम एट द प्रेरी इवेंट्स पार्क ऑन द 14th अगस्त. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंडे को जो कि 10 तारीख है अपना सूफी नाइट होने अपना होने जा रही है, एंड इट्स बाई इन्विटेशन ओनली. और ये सिंगर कौन है? ये अपना राणा भाई, मैं सॉरी,
0: ये का नाम है हसनैन अकबर साहब,
1: हसन अकबर साहब. हाँ, yes.
0: ये हमारे पाकिस्तान से लोक सिंगर है और फोक और लोक ये गाना गाते हैं. कमाल आवाज है उनकी ना, ऐसी मिठास है उसकी, ऐसा है कि नेचुरल है उनका ना.
1: ठीक है.
0: बल्कि जरा भी असल में एक्चुअली ये बात ये है कि हम लोग आ गए हैं इस इधर, जब हम पाकिस्तान में, इंडिया में या वहां रहते तो बहुत सारी चीजें हम अपने एनवायरमेंट से सीखते थे
1: जी,
0: अपने बुजुर्गों से सीखते थे, घर में, फैमिली में, दादी अम्मा
1: जी,
0: दादा अबू हो गए.

0: ये लोगों से बहुत सारी हम चीजें सीख लेते थे
1: जी.
0: जब हम इधर आ गए तो हमारे बच्चों के ऐसे कल्चर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है. मैं तो बल्कि कहूंगा कि जो आए अपने बच्चों को भी लेके आए जिनको शौक हो पंजाबी से, अपनी अपनी मादरी जुबान से, अपनी मादरी अपने लिविंग कल्चर से, जो हम वक्त गुजरा था मेरे बाप मेरे दादा
1: जी, जी, जी.
0: कैसे रहते थे, कैसे ड्रेसअप होते थे, कैसी बातें करते थे, उनका बल्कि उनका व्यू विजन जो है दोस्तों के बारे दोस्ती के बारे में क्या था, रहन सहन के बारे में क्या था, कि ड्रेसिंग के बारे में क्या था, लेन देन के मामला में कैसा था, क्या कमाल चीजें थी.
1: Beautiful, beautiful. Or, you know, I'm just mm-hmm. reading from the poster. It's the program. It will be tribute to all the legends. Baba Farid, Shah Hussain, Sultan Bahu, Bulle Shah, one of my favorite,
0: yeah.
1: Waris Shah, Mia, Bakshish. Muhammad Muhammad Bakish, और फिर शाह अब्दुल लतीफ भीटा. स्कूल में हमारे स्कूल के सिलेबस में इनके नाम होते थे. जी जी हाँ, जो है शाह.
0: अच्छा मैं और बात जिला भाई, ये जो सारे लोग आपने मियाँ मोहम्मद फरीद हो गए, बुल्ले शाह हो गए, जलाल भाई, ये कोई शायर नहीं थे, ये कोई मोहब्बत भरी दास्तानें नहीं लिखते थे, या ये कोई फेक या कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं लिखते थे
1: जी.
0: ये उस दौर के सेंट थे, बुजुर्ग थे, लोग इनको फॉलो करते थे
1: जी.
0: इनके तो हजारों लाखों बल्कि फॉलोअर्स होते थे
1: जी.
0: और ये कलाम वो तब लिखते थे, तो जो ऐसा बुजुर्ग हो जिनको लोग फॉलोअर्स हों, वो जो कलाम लिखते होंगे तो वो ऐसा कोई बेसलेस नहीं होता था. लोग इनको फॉलो करते थे और वाकई वो एक कीमती सरमाया होते थे हमारे लिए.
1: जी जी जी जी
2: जी बिल्कुल आपने सही फरमाया. तो जाहिर है उनकी जो तालीमात हैं उनका एक इम्पैक्ट था उस वक्त की सोसाइटी पे भी और अभी भी
1: है.
2: सोसाइटी जो है वो अपने जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें नहीं बदलती.
1: नहीं, सही बात.
2: बाकी चेंजेस तो टाइम के साथ आती रहती है.
1: जी जी बिल्कुल.
2: तो इसलिए जब हम इनका कलाम सुनते हैं तो हम असली चीजों पर चले जाते हैं जो ट्रूथ्स हैं जो कि अनडिनायबल है
1: जी.
2: तो इसलिए हम इनको फॉलो करते हैं, इनकी तालीमात को, इनके थ्रू इनकी जो पोइट्री है उससे हम महसूस भी होते हैं और सीखते भी.
1: बिल्कुल,
2: दोनों चीजें होती हैं.
1: बिल्कुल. आज का जो शो है कॉफी जॉय, इसको स्पॉन्सर किया है ऑप्टिमा आईवर एंड ऑप्टोमेट्री. इनकी दो लोकेशन है, एड्री एंड कैलगरी. अगर आप जो है कैलगरी में नॉलर हिल में आएंगे तो यू विल फाइंड मी देयर. वहां का फोन नंबर है 4034636666. अगर आप अपॉइंटमेंट में लेना डॉक्टर का, बाय ऑल मीन्स यू कैन विजिट optimaeyewear.ca और जो है आप अपना बुक जो है बुक भी करवा सकते हैं. कॉन्टेक्ट लेंस, सनग्लासेस, एनीथिंग यू कैन कम एंड देन आई विल गेट यू द बेस्ट प्राइस जो भी मेरे अपने हाथ में. 4034636666 A2Z वैक्यूम. अगर आप जो है कोई कमर्शियल या तो फिर रेजिडेंशियल वैक्यूम सिस्टम देख रहे हैं, हनीफ माओजी फ्रॉम A2Z वैक्यूम, ही इज अवर गुड फ्रेंड एंड ही इज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस ऑफ द शो एज वेल. 4032074882 4032074882. बोस्टन पिज्जा सेल्टॉन सर्कल, जहां पर हलाल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. संजीव कार्ड, हमारे गुड फ्रेंड, ही इज द ओनर एंड ही इज अवर वेरी वेरी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल अवर इवेंट्स. इनका फोन नंबर 4035905503. अगर आपने कोई प्राइवेट रूम चाहिए, प्राइवेट लेट्स से फॉर द बर्थडे पार्टी, एनीथिंग, ही विल बी एबल टू जो हेल्प यू. जस्ट कॉल संजीव कैट एट सेल्टॉन सर्कल का बोस्टन पिज्जा, जहां पर हलाल ऑप्शंस भी अवेलेबल है. टीडी बैंक की हो, मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अलीशा बिनिंग. अगर आपने कोई मॉर्गेज लेनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, सो ऑफ कोर्स शी कैन हेल्प यू आउट विद द टीडी बैंक. 4036819687 4036819687. अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आई एम श्योर यू कैन गेट अ गुड प्राइस. और हमारे आखिरी जो है, फॉर एनी डिजाइनिंग प्रिंटिंग, यू कैन कॉल शफीन जीवानी एट कास्केट प्रिंटिंग, जहां पर मैं करवाऊँ सारी हमारी प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग. इनका फोन नंबर 4032502202 4032502202 शफीन जीवानी. तो ऑफकोर्स मेरे साथ जो है राणा भाई और जो है वसीम अहमद यहाँ पर मौजूद हैं. इनका इवेंट होने जा रहा है मंडे को, अगस्त की 10th को, ओनली बाय इनविटेशन, सूफी नाइट, जहां पर हसन अकबर आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, और जो आके बहुत ही सुपर डुपर सूफी कलाम बोलेंगे हमारे लेजेंड्स की तरफ से. राणा भाई, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो दोनों को, जो अपना जो है प्रोग्राम करवा रहे हैं. आई एम श्योर इट्स गोना बी जैम पैक ये. लेकिन आपके जहन में क्यों ऐसा है कि हमें सूफी नाइट करनी चाहिए, व्हाई नॉट एनी अदर पॉप इवेंट, डिस्को इवेंट?
0: वो हमने आपके लिए रखे हुए.
1: गुड पॉइंट. मेरा भी इवेंट हो रहा है जी, अगस्त के साथ को, फ्रेंड एंड को, जो कि अपना सोल्ड आउट है. यस,
0: ये एक्चुअली जरा भी देखते रहते ना.

0: people to enjoy the show. Anything else you want to add? Rana bhai, Vaseem bhai?
1: Bas, aam aapko bhi daawat hai apne zaroor.
0: Inshallah, inshallah sir.
1: Monday ko kyunki wo farag nahi the, unke paas kafi apna busy the wo Canada mein, North America mein.
0: Ji
1: ki hame din mila tha to humne fir Monday ko rakha hai.
0: Oh, very nice.
1: Mushkil hai lekin hame shauk ke samne to kuch nahi hai. तो ये जरूर रखें, ये आप फेसबुक पे हमारे जो ना पोस्टर देख रहे हैं इनविटेशन के लिए, मुझे वसीम साहब हैं, नदीम तफेल है, तो इनको अगर हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उन लोगों को भेजें, अगर नहीं किसी के पास किया तो डेफिनेट हमें जरूर कॉल करके
0: जी बिल्कुल
1: ले सकता है.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो एक बार फिर से सूफी नाइट ऑन अगस्त 10th एट जो है सुल्तान बैंकवेट हॉल, जिसको ऑर्गेनाइज किया है लाइक अवर गुड फ्रेंड राणा भाई एंड ये वसीम भाई, और यहाँ पे और भी इनके जो फ्रेंड्स हैं एज ए स्पॉन्सर इंक्लूडिंग असद चीमा, जो है आजम कालू साहब, मलिक फैसल एंड ऑफकोर्स गुलाम रसूल साहब, सुल्तान बैंक्वेट हॉल.
2: Anything else? Yeah, in the end, यही है रिक्वेस्ट सभी से कि आप तशरीफ लाएं और enjoy करें.
0: Enjoy करें, yes, yes, yes. और जो है हसन अकबर विल बी जो है परफॉर्मिंग ऑल द सूफी सॉन्ग्स फ्रॉम ऑल द लेजेंड्स. Sir, thank you so much. Thank you so much for coming in.
2: आप
0: बैठे, we'll take some pictures as well. तो also जो है we'll take जो small जो है commercial break. Break के बाद I'll be right back. और फिर मेरे साथ जो है हमजा बट from the बट कढ़ाई वो join करेंगे, इसलिए कि अगस्त की 7 को जो जो event होने जा रहा है from the coffee jar जो कि sold out है, तो वो आके बात करें. Plus of course उनकी जो है cricket academy है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, इसलिए last weekend एक बहुत बड़ा tournament हुआ था, तो उसके बारे में we'll talk about some cricket and some fun stuff after this small commercial break. Thank you so much for listening and watching. कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM. मिलते हैं एक छोटे सी ब्रेक के बाद.
3: निगा वेलकम. फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इको छत हेठ. असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ भी देर शाम तक. ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696.
4: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार.
5: ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ.
4: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ. ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 587-832-1208.
5: ਬੜੇ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ?
4: ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਘਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ. ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ.
5: ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ. ਆ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ.
4: ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਨੋਟ. ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403-618-2112.
5: ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਟਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ.
4: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ?
5: ਜੀ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ

Beautiful track. क्या हुआ तेरा वादा by रफी साहब और आपको इससे बहुत सारे गाने सुनने के लिए मिलेंगे on August की 7 तारीख को जो कि sold out show है. It's the जो show का नाम है वो है फिर रफी जिसको ट्रिब्यूट देंगे वहां पर जो है अपना मोहम्मद रफी साहब और सोनू निगम का जो है ट्रिब्यूट होगा तो नो इट्स ऑल जो अपना लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी नो नॉट द मूवी फॉर द इवेंट जिसको ऑर्गेनाइज किया है कॉफी विद जलाल ने लीजिए अगला गाना सोनू निगम साहब की आवाज में हम सुनते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना यस मैं हूं ना जिसको गायस सोनू निगम साहब ने लेट्स एंजॉय टुगेदर और अगेन डोर्स ओपन एट 7:30 डिनर स्टार्ट्स एट 8:15 8:30 सो मेक श्योर यू आर ऑन टाइम थैंक यू

What an amazing song, Main Hoon Na, 2012 ki super duper movie, jisme the Shah Rukh Khan, of course, aur Zahid Khan, jisko gaya Sonu Nigam, and Shreya Ghoshal ji ne, music director Anu Malik, lyricist the Javed Akhtar, and of course, music label tha T-Series ka. Yes, you are listening to Coffee Jalal on Radio Suzanga, 94.7 FM, jisko sponsor kya hai Optima Eyewear and Optometry, agar aapne lens, contact lens, sunglasses, prescription glass, agar aapne जो आंखें चेक करवानी है, यू कैन कॉल 463-403-463-6666. अवर गुड फ्रेंड शहजाद मियां साहब, ही इज द ओनर, बट इफ यू कम टू नोलन हिल लोकेशन, यू विल फाइंड मी देयर. ए टू जी वैक्यूम, जिस अगर आपने वैक्यूम पे सर्विस करवानी है, या तो कोई नया जो है नया वैक्यूम लेना है फॉर योर रेजिडेंशियल और फॉर योर जो है कमर्शियल या फॉर योर ऑफिस, 403-207-4882. बॉस्टन पिज़्ज़ा सेटल टाउन सर्कल, जहां पर हलाल ऑप्शन भी अवेलेबल है. दे हैव द पार्टी रूम, दे हैव द बर्थडे पार्टी रूम, एवरीथिंग यू नीड, 403-590-5503. और फिर है हमारा अलीशा बिनिंग, जो कि मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट है विद द टीडी बैंक. इफ यू लुकिंग फॉर एनी मॉर्गेज और इन्वेस्टमेंट, 403-681-9687. एंड द कास्केट पेंटिंग, शफिन जीवानी, फॉर योर ऑल काइंड्स ऑफ पेंटिंग, designing any kind of poster, any kind of your office printing. Inka phone number 403-250-2202. Now, of course, we are getting ready for the August the 7th, jo ke phir Rafi ke naam se jo sold out show hone ja raha hai, jiske jo title sponsor hai Golden Harmony Care, aur phir jo hamare mega sponsor hai उनका नाम है प्राइम रिच कंस्ट्रक्शन इन कंपनी, 5873250011. इंडियन टेवर्न, तो ये हमारे सिल्वर स्पॉन्सर है. मैमस्टर्स, दे आर अवर सिल्वर स्पॉन्सर. कास्केट प्रिंटिंग एंड बटकड़ा बेन कुटरॉल, ये हमारे सिल्वर स्पॉन्सर है. फोटोग्राफी बाय सुहेल काशिफ, वीडियो प्रोमोज बाय आयरा लाडक, मीडिया पार्टनर सलाम नमस्ते कैलगरी एंड रेडियो सुसंगम 94.7 FM. वहां पर जो है रेफर ड्रॉ भी होंगे, जिसको स्पॉन्सर किया है आइज बाय बशीर, ऑप्टिमा आईवेयर एंड ऑप्टिमेट्री, सिजलिंग ग्रिल, मिर्ची रेस्टोरेंट, बट कड़ाही रेस्टोरेंट, मैमस्टर्स. वहां पर आपको जो गिफ्ट कार्ड भी होंगे, द वन यू कैन विन वाया रेफर टिकट्स. तो लीजिए अगला गाना सुनते हैं. मुझे अभी बीच में फोन आ रहा था, आई होप इफ यू आर कॉलिंग मी, आई थिंक उनका जो लास्ट फोन नंबर है 2690, आई विल कॉल यू आफ्टर माय रेडियो शो इफ यू डोंट माइंड. लेट्स मी जो है प्ले वन मोर सॉन्ग. हाउ अबाउट दिस सॉन्ग, कौन सा चलाऊं यार, कोई अच्छा गाना कोई मिले. यू नो सोनू निगम साहब का एक है ना सोनू निगम हिट सॉन्ग, देयर वी गो, जस्ट स्टे विथ मी. जो है लाइव शो का यही मजा है. और चलो यू नो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, अभी मुझ में कहीं, जो कि मूवी का नाम है. अजय अतुल ने इसको म्यूजिक कंपोज किया है, लेकिन मूवी का नाम भी आई एम श्योर मुझे याद है. अग्निपथ, सुपर डुपर मूवी. हियर वी गो.

सुपर डुपर गाना यस फ्रॉम द मूवी अग्निपथ जो कि अपना ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसको ये मैं गाना देख रहा था उसको 2013 में मूवी आई है 211 मिलियन व्यूज हैं ये गाने के ऑन यूट्यूब ओनली 211 मिलियन अमेजिंग. तो ये था आज का शो कॉफी जलाल. आपको अपना बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का और देखने का. इंशाल्लाह फ्राइडे को जो हमारे दोस्त आ रहे हैं सो विल सी यू एट द बटकड़ाई. डोर्स ओपन एट 7:30 एंड डिनर स्टार्ट्स अराउंड 8:15-8:30 और फिर म्यूजिक विल स्टार्ट एट जो है 9:30. तो बट बिफोर आई गो आई जस्ट वांट टू प्ले वन मोर सॉन्ग. Then you can enjoy this track and we'll see you on Friday. Okay, I think there we go. Enjoy.

0: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 तो 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 तो 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: हो सकता है कि आप इसे अब्यूज ना समझें लेकिन अपने शरीके हयात को धमकी भरे पैगाम भेजना उनकी लोकेशन को खुफिया तौर पर ट्रैक करना या उनके फोन की सरगर्मियों पर कंट्रोल रखना भी तो बदसलूकी ही है टेक्नोलॉजी के जरिए की जाने वाली बदसलूकी जिस्मानी तो नहीं होती लेकिन इसके असरात उतने ही संगीन और नुकसानदेह हो सकते हैं अगर आप या आपका कोई जानने पहचानने वाला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या उस पर कंट्रोल रखने के लिए कर रहा है तो तब्दीली मुमकिन है मजीद मालूमात के लिए alberta.ca/endgbv पर जाएं हुकूमत अल्बर्टा की ओर से पैगाम
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community anytime, anywhere.
0: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
3: The following program speaks to the South Asian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM

उन्हें आख्या आज जो इतने बैठे है ये विधायक ने मंत्री है ये संगत नहीं गए संगत वो श्री अकाल तख्त साहब विखे बैठी सी वो दलीलों नाल भी बोलती रही इधरों अगो जो बोलने वाले सी उन्होंने भी दो तीन जन ने खास करके कुलदीप सिंह धारीवाल ने काफी खड़कवी बोली थी जवाब दिते उन्हें आख्या जी तुम तुहाडी सरकार पिछली ने की किया तुहानूं तुसीं कहने कि अकाल तख्त के हुक्म तो मुनकर हुंदे आ तुहाडा रिश्तेदार सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहब ते सब कुछ मन के आया ते आके उस हुक्म तो मुनकर हो गया वो कहिंदा भी उह ते एवें मन दी खातर मन्निया उहदे बारे की यानी बराबर दा पेड़ सी पर कमाल दी गल है इहदे विच कांग्रेस ही उठ के बीबी गनीब कौर मजीठिया के पक्ष में आ गए जो वो आए लगे बोलन गुरु दोखी डिकलेयर होया साडा मुख्यमंत्री ते इस मुद्दे के उत्ते फिर आम आदमी पार्टी वाले उन्होंने भी पै गए भी तुसी ये दसो तुसी ओ ही लोग हैं जिन्होंने तोपां नाल अकाल तख्त साहब ते आया सी जो कुछ कीता सी तुसी पहले अपना जवाब तो दे लो यानी मुद्दिया की बहस कल घट पई ते इस किस्म की बहस ज्यादा चल पई उदा भी अजकल इस मुद्दे के उत्ते बहस बहुत तिखी हो रही है अजे एक दिन पहला वारस पंजाब दे नाल जुड़िया जिहड़ा विधायक है अकालिया का मनप्रीत सिंह अयाली बहादुर अकाली दल नूं तो छड़ चुका उन्हें उत्थे जाके मुद्दा उठाया सी बंदी सिखां दा उन्हें कल भी अमृतपाल सिंह दे उत्ते केसां दा मुद्दा उठाया उन्हूं उह जवाब दिंदे आ कि हुण तैनूं बंदी सिखां दा चेता आ गया जदों सुमेल सिंह सैणी नूं सब तो वड्डा जिहनूं सिखां दा दुश्मन मन्निया जांदा उहनूं तुसीं डीजीपी लाया सी तूं उस अकाली दल सी तकबीर सिंह बादल डिप्टी मुख्यमंत्री उदों तुसीं सोचिया सी तूं उदों बोलिया सां अपना कोई बयान विखा की तो यदा कोई विरोध किया इन्हों मुद्दों के उत्ते भी चंगी चक चक हुई ये मुद्दे जो उठते हैं बाकी मुद्दे पिछे पै जाते हैं ये दौरान कल पंजाब सरकार ने अपने फैसले वो नवे शुरू करने शुरू कर दिए पंजाब से नवी यूनिवर्सिटियां बन गया डिजिटल यूनिवर्सिटियां कुछ लोग कहना स्वागत कर रहे कुछ लोग स्वागत भी नहीं कर रहे विरोध करना चाहते पर बोलते नहीं चुप ने इहदा फायदा कोई नहीं अगे यूनिवर्सिटिया की इत्थे लाइन लगी पई है हुण भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां तिने बनियां ने जिहड़ियां पहलियां यूनिवर्सिटियां इत्थे बनियां वह भी एजुकेशन दीयां डिग्रियां वेचण दीयां दुकानां ने मैं एक एक यूनिवर्सिटी बारे जाणदा मठियाई दीयां दुकानां तों जिहड़े तुरे सी अज कित्थों तक पहुंच गए लोगों को पता पर उन्हां दी गल जो करदे आ तो सारे नूं पता कि यूनिवर्सिटी तक बाद च आए सी पहले उन्होंने आटोमोबाइल दा कारां दे शोरूम ते मोटरसाइकल स्कूटरां दे शोरूम इत्थों आटो दी दुकान तों शुरू कीता सी वड्डा कारोबार उन्हां दा हो चुका सी हुण कई इहो जिहियां यूनिवर्सिटियां बन रहियां ने जिहड़ियां यूनिवर्सिटियां बनाउण वालिआं दा कदे किसे ने नां नहीं सुणिआ एक यूनिवर्सिटी एहो जी बन गई है जिदे वाइस चांसलर उस बंदे नूं लाया गया जिन्हों वो कहिंदे आ कि इहने पी एच डी कीती है डॉक्टरेट है पर जिहड़ी डिग्री उहदे कोल है जिथों उहने डॉक्टरेट कीती है यूनिवर्सिटी नूं उथों दा जो भारत सरकार दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आ वो कहिंदा जी उह यूनिवर्सिटी है नहीं उह तां फेक यूनिवर्सिटी है फेक यूनिवर्सिटियां उह होंदियां जिहड़ियां दो दो चार चार कमरियां चलदियां तुहानू कनेडा दे लोकां तों ज्यादा तजर्बा हो चुका इहो जिहियां फेक यूनिवर्सिटियां ते फेक कालजां ने साडे बच्चे किन्ने क खराब कर दिते जिहड़ा फेक यूनिवर्सिटी दी फेक डिग्री लेके आया उहनूं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इहो जी दा वाइस चांसलर लाता जिहड़ी यूनिवर्सिटी इस वेले एक किलोमीटर दे लंबा करीब उहदा लंबा चौड़ा कंपलैक्स है पता ही नहीं किन्नी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है किन्ने उत्थे बच्चे पढ़ते हैं किन्ने हजार करोड़ का फीसा का दूजा कारोबार हुंदा कोई पुछण वाला है नहीं जिहड़ियां

0: जरूर चेक करो तसल्ली बख्श ते तेज सर्विस लंबे समय तो भरोसेयोग सेवावां लई जाने जांदे हन अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिद्धू 4036074208 अकाल फॉरन एक्सचेंज
1: कैलगरी दे मैं पतकोटी तेरे नाम लगा दांगे
2: पूरा साल हो गया गाना सुनदी नूं बस कैलगरी च कार लैण दीआं फीलिंग आई लई जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है उन्हां दे आउण तो पहला मैनू घर चाहिदा है
3: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण घर एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनिया जग्गी ढिल्लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
2: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445
4: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
5: की होया
4: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
5: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
6: हेलो गोपी शुक्र है तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा कर लिया सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए
7: ओ सारे डरदे नहीं चकदे ओना नु लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे सामान नु हाथ पावे
6: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालेयां नु एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा सामान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ
8: अपने घर जा ऑफिस दा समान मूव कराना होवे ता स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 4038701790 4038701790 स्टार मूविंग